जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश फारे कर आज। फुन द्रोपती लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज। सुदामा अपदा ते राखिया, गणका पड़त पूरे ते काज। श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए, राखो दास पाठ की लाज।

अपरंपर अलख अपेव दृष्ट तरत तम हरण दहन अग पाप प्रणासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रतपालन आत्म रस संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु सत सतगुरु तिलक सत लागे सो पै तरे गुर राज गुर जगत फिरन सिंह अंगरो राज जोग लहना करे अमे दिष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नवनिद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सुकहु टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

करै हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसारे खोवै गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवै सुकहु टल गुर सेवियै एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।

कोई स्त्री लगातार 3 महीने घर तो बाहर रही है, ते 3 महीनिया बाद अगर घर विच आउंदी है ते पति दी मर्जी है उसनु रखना है या नहीं रखना, ते उन्हें मर्यादा बनाई श्री राम ने। श्री राम ने ये मर्यादा भी बनाई कि राजे दी आखी हुई गल अगर बहुपक्षी काबले कबूल ना हुई ते राजे दी उस गल नु रद्द कीता जा सकता है। ते बहुगिनती दे च अगर प्रजा कोई गल आखे ते राजे नु वह गल कबूल भी करनी पएगी, प्रवान भी करनी पएगी, मनना भी पएगा। ते उसने मर्यादा बना दिती। सीता जद घर विच आई, आप अयोध्या दे राजा बने, सिंघासन ते बैठे, ते प्रजा दी बहुती आवाज ए उठ पई भई सीता राम दे इस महल विच नहीं रहनी चाहीदी, ते 3 महीने रावण कोल रही है। आवाज उठी और ये बहुपक्षी उठी, एक धोबी तो उठी, बहुपक्षी आवाज उठी, ते राम ने आप जो है मर्यादा बनाई सी बहुसम्मति दे च अगर प्रजा कुछ आखेगी तो राजे नु भी झुकना पाएगा। गल मन ली, काबले कबूल कर ली, जे प्रजा इस ढंग नाल चाहती है ते भावे मैं ना चाहता होया भी प्रजा की गल का सन्मान करदा, मैनू प्रवान है। सीता नु घरों कढ दिता प्रजा दे कहण ते, जे प्रजा नहीं चाहती तो ठीक है, जे संसार नहीं चाहता तो ठीक है, जे बहुगिनती नहीं चाहती तो मैनू इस प्रजा की गल नु जो है प्रवान कर लगे हां, कोई दुख नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उस वक्त हुक्म दे दिता भी सीता प्रजा नहीं चाहती तो मैं आप ही मर्यादा बनाई है, तो मर्यादा दे उत्ते मैं अपनी जान दे सकता। इस वास्ते राम दे नाल एक दोहरा बड़ा मशहूर हो गया, क्योंकि रघुकुल विच पैदा होए सन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो कुछ कह दिता है वह निभाना है, भावे प्राण ही जान, भावे जिंद जाती है तो जावे। तो मर्यादा ते आप बनाई सी, तो होया कि जब बहु पक्षी बहु समति ने आवाज उठाई, आपने सीता नु घरों कढ दिता। इस ढंग नाल प्रजा की खुशी ले ली, सिंघासन ते बने रहे। प्रजा ने कहा सानू काबले कबूल है, ये राजा जड़ा है काबले कबूल है, पर साडा देश राम राज तो चल के किथे पहुंच गया कि एक अदालत वकत दी, एक अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट वकत दे हुक्मरान नू दोषी साबित कर देंदा है, वो कानून ही बदल के रख देंदा है, वो विधान ही बदल के रख देंदा है, वो विधान दे तरमीम ही करके रख देंदा है। ऐ साडे देश दा ढांचा राम राज तो चल के इत्थे जा पहुंचे, और ये नक्शे मैं थोड़े सामने रखदा पिया जो कुछ है, किथे राम राज मर्यादा जो बनाई, और राम जब सीता नू घरों कढ़दे ने कहिंदे ने लगातार रोंदे ही रहे कई दिन तक भी सीता ते जुल्म होया, मेरे ते भी जुल्म होया, पर मैं करा कि मैं मर्यादा बनाई है, प्रजा नहीं मनती। हुण जब प्रजा नहीं मनती ते इहदा मतलब थोड़ी है कोई मैं राजा ते विधान बदल देना। अगर चाहते ते राम विधान बदल सकते सन, राजे सन, ताकत दे सन, सेना उन्हां दे कोल, सिंघासन उन्हां दे कोल, सब कुछ उन्हां दे कोल सी, ते एक लकीर नाल विधान बदल सकते सन, नहीं बदलिया। आख्या कोई गल नहीं, सीता दुख सहार लेगी, मैं दुख झेल लवांगा, मैं बनाए हुए विधान नू नहीं बदलना। लेकिन उस विधान की लपेट विच अज दा हुक्मरान जद आ जाए तो खिमा करनी, विधान नू बदल के रख देंदा है। विधान नू बदलना, खिमा करनी कोई पाप नहीं, ते जद कोई विधान की जो है तरमीम करने की मंग करे ये पाप हो गई। अरे स्पष्ट गल है थोड़े सामने, विधान नू कितनी दफा बदले है। अगर विधान नू बदलना उहदे तरमीम करना पाप है, तो कम से कम इस तरह का पाप 50-60 दफा ये कर चुके ने, इतना पाप ये कर चुके ने, क्योंकि इतनी दफा तब्दीली लियाई गई है, इतनी दफा इस दी तरमीम हुई है, इतनी दफा इस दी संशोधन होया है। जे संशोधन करना एक पाप है, तो ये पाप 50-60 दफा हो चुके है, पहले भी हो चुके है, इन्हां 30 सालों विच हो चुके है, 35 सालों विच इतना वड्डा पाप जो है हो चुके है। तो खिमा करने मुख्तसर अर्ज करा, राम राज वो राज चल के किथे जा पहुंचया, तो होया ए राम राज सुपना बन के रह गया। गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिख जगत नु एक नारा दिता, तुसी रब तो एक मंग मंगो।

मुझे देखा और तो कोई नहीं है इन्नी मार कर रहे हैं कहने में कबीर कसौटी राम की चूठा टिके न कोई तो राम की कसौटी की है गुरु की कसौटी की है जो चूठा पूरा नहीं करता चूठा का मतलब दुनिया का राम की कसौटी है दुख कि हम दुख दे साथ देंदा है कि नहीं कि हम दुख दे शुकराना करता है कि नहीं दुख देख भी हूं निकट रहा है कि नहीं बस एक कसौटी कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न को राम कसौटी सोस है जो मर जीवा मैं जब इस ढंग गुरु घर का इतिहास पढ़ना कि मैंने अजीबो गरीब गल दिखाई देती है कि देश के पुराने वसनीक जड़े सन उन्होंने खास खास मौकों से गुरुओं का साथ नहीं दिता खास खास मौके द्रोह किया छल किया कपट किया और मैं यह भी हैरान हो जाना कई दफा देख के कि गुरु नानक का पहला सिख है राय बुलार मुस्लिम है सिखी राय बुलार तो आरंभ हुई इतनी मैं कर गुरु नानक ने सच का नारा लाया है कोई अजे कह रहा है सुराई है माता पिता भी कह रहे हैं मखट्टू है और आले दुआले के पड़ोसी गवांडी के शरीक भी कहते पेने कुछ मस्ताना जे हैं पर राय बुलार कहता नहीं वली अल्लाह है तो वली अल्लाह है सिख बने हैं अजे भी राय बुलार क्योंकि भट्टी खान नाम तो सी उसकी उम्मत के लोग ननकाना साहब दर्शन कर आते हैं गुरपुरब वाले दिन जब जलूस निकलता है तो नाल शामिल भी होंगे अजे भी पति खानदान नाल शामिल होंगे फिर अगे चलिए पंजे पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन हरिमंदर की नींह रखते हैं फकीर मुस्लिम हैरानगी होती है मुसलमान है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रगट होते हैं कि इस देश में बड़े संत साधु योगी जनम लेकिन पता चलता है सब तो पहले भीखन शाह मुस्लिम है तो कहता है अज वली अल्लाह पूर्व की तरफ प्रगट होया लिहाजा मैं नमाज भी पूर्व की तरफ करांगा दिन लहंगे की तरफ नहीं मुस्लिम है और थोड़ा जहा होर अगे जाइए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज के 400 खलीफे से अपने चार बच्चे शहीद कराए किसने पीर बुद्धू शाह ने मुस्लिम है साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडले पकड़वाए किसने मंगू ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कदम कदम से मुखालफत की थी किसने बाईदार के राजा ने थोड़ा जहा इतिहास इस ढंग में देखना पैना है तह जाके कुछ पता चलेगा मुखालफत अज दे नहीं तो कम बना नहीं चली जाए और कुछ देश के पखंडियों और ईर्षालुआ पनप दया खिड़े आया फुल चंगा नहीं लगता और जब ये बच्चे साहेब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के सूबा सरहंद की कचहरी पेश हुए ने तो मेरे पढ़न के जो इतिहास आया दुरान महफिल सारे बंदे बैठे ने जिन्होंने फैसला करना कि साहेब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडलियों के संबंध में एक काजी भी बैठा से जिन्हें इस्लामी शरा के मुताबिक फैसला करना बड़े बड़े नवाब भी बैठे जागीरदार भी बैठे तो ये सूबा सरहंद वजीर खान भी बैठा फैसला करना सूबा सरहंद मुखी है तो काजी मुखी है उन्होंने फैसला आखिरी फैसला होना सूबा सरहंद ने गल शुरू की दीवान सुचा आनंद को सुचानंद जी तुम दसो इन्होंने बच्चों।

शरीर नु तो लेन नाल मन ते नहीं धोता जांदा। विचार ते शुद्ध नहीं हुंदे। तन नु रोज धोंदा रहो, सुभाव नहीं बदलना। ऐसा भाई गुरदास जी ने एक गल आखी, कहन लगे तुमने अमृत सिंचिए, तुम्मे दी वेलन कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे। मिठा घोल घोल पानी विच उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे, ते की तवक्को रखदा है भी तुम्मे दी कुड़त्तन मिठास विच बदल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल दिता है, कहिंदे ने

0: रोज
1: अमृत सिंचन नाल भी निम का सहज नहीं जाता, भाव सुभा नहीं बदलता। सहज का अखरी अर्थ सुभाव, क्योंकि जेड़ी गल सुभाव च शामिल हो जाए, जेड़ी गल सुभाव च शामिल होवे वह मनुख सहजे कर लें, ते जेड़ी गल सुभाव च शामिल ना होवे जे वह करन दी कोशिश भी करे तो वह करन लग्या उसनू उचेच करनी पैंदी। इसलिए सहज लफज सुभाव नाल शामिल हुंदे, सहज सुभाए होए सो होए। सहज हमेशा उस गल विच हुंदी है, उस काम विच हुंदी है जेड़ी सुभाव च शामिल हो जाए। तो हजूर दा कहन दा भाव है, कहिंदे निम नू कोई अमृत सिंच लाए पर उनका सहज नहीं जांदा, भाव उनका सुभाव नहीं बदलता, क्योंकि निम नू अमृत तो बाहर पाया गया है ते सुभाव उनके अंदर। इसे तरह हजूर कहिंदे ने कई गल्लां मनुख दे तन नाल सांझ रखदियां ने, बाहर नाल सांझ रखदियां ने। तन दा कपड़ा मैला हो जाए, तन मैला हो जाए, तन उपर दी चीज है, इनू मैल बाहरों लगनी, बाहरों पै खाक मिट्टी ते तन ते मैल चढ़ जाए, ते उस मैल नू बाहरों पई मैल नू उतारन लई बाहर पानी दी लोड़ है। तन दा कपड़ा मैला हो जाए, साबण दी जरूरत है। हजूर कहिंदे

सनम कंधों के बुत हो गए पुराने, अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने, अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा। हुण 33 करोड़ देवते लड़ देने, झगड़ देने, एक देवता दूजे नाल, दूजा तीजे नाल, तीजा चौथे नाल, खिमा करने एक दूजे दा दुराचार भी करते ने देवी देवते, चोरियां यारियां देच भी ने, सब कुछ है। ते हुण उन्हां देवतियां दी उपासना करन वाले, उन्हां देवतियां नाल जुड़न वाले, और देवते भी पत्थर दे ते पूजदियां पूजदियां पत्थर नहीं होणगे, दिल दिमाग पत्थर हो जाणगे, ते पत्थर नाल कोई टकराएगा ते अपना सिर भन्नेगा ना, इन्नी है ना। हिंदुस्तान दा ए सिर, हिंदुस्तान दा ए ब्राह्मण इतना करड़ा हो गया, पत्थर पत्थर नू पूज पूज के पत्थर हो गया, जिहड़े विचारे टकराते गए उन्हां नू चकना चूर करदा गया, अज तक तो इस तरह ही होया। और इन्हें समझना कि विपरीति खत्म हो गई, पत्थर दिल खत्म हो गए ने, पत्थर दिमाग खत्म हो गए ने, मौजूद ने, यह निजाम बदलना पड़ेगा। यह पत्थर दिलों का इत कोमलता चाहिए है, बहुत वड्डी कोमलता चाहिए। तो खैर इकबाल कहिंदा है, सच कह दूं ऐ ब्राह्मण गर तू बुरा ना माने, तेरे सनम कंधों के बुत हो गए पुराने, अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, अपने नाल वैर। कमाल दी गल, पंजाब देश दा अंग ते सारे प्रांतां नू हर तरीके नाल संपन्न करन दी कोशिश करो, पंजाब नू कमजोर करन दी कोशिश करो। जे तुसी एनएसए भी लाओ ते बाकी प्रांतां दी सजा 1 साल दी, पंजाब देश 2 साल दी, इत्थे 2 साल दी। जिस जिस प्रांत च तुसी डैम बनाओ उस प्रांत दे हवाले कर दो, पर इत्थे तुसी भाखड़ा बनाओ ते अपना ही कंट्रोल रखो, पंजाब नू नहीं देना। यह क्यों दिता जाए? इहनू तुसी अंग कदी समझिया ही नहीं, कि जब तुसी पंजाब नू अपना अंग नहीं समझते ते पंजाब दे च रहण वाला थोड़ा अंग किस तरह होवेगा? उसनू तुसी अपना अंग, एक हकीकत है, बहुत वड्डी सच्चाई है। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, तेनू पता ही नहीं सिख इस देश का जितना अपना है होर कोई अपना नहीं। इत्थे ते पुराने बंदे जय चंद पैदा होंदे रहे जो देश नू गुलाम करदे रहे, इत्थे ते खिमा करनी भगत सिंह जैसे सिखां दे च पैदा होए जो देश नू आजाद कराते रहे, इत्थे ब्राह्मणा दे जय चंद पैदा होंदे रहे जो देश नू गुलाम करते रहे। इत्थे इतिहास है, सामने इतिहास है, साडे विच तुसी एक जय चंद पैदा करके दिखाओ, इतिहास पढ़ के वेखो पुराना, जय चंदा दी डारां दी डारां लगियां पईयां इन्हां विच, अथा अनंत। ते कमाल दी गल, अपनों से बैर रखना, इकबाल कहिंदा बई मैं इस देश दा वासी हां, मैं इस देश दे च रहिंदा, इस देश दे च जमिया पलिया, मेरे पिता पितामा इस देश दे, पर अपनों से बैर रखना तू नो बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने, तंग आके मैंने आखिर। हुण ए शहर गुरु रामदास जी दा वसाया होया ना, ते कदम कदम दे उत्ते हर चौक दे उत्ते कुछ ऐसे आकार बनाए जान पत्थरां दे जिथों गुरु रामदास दी झलक हर पासे मिले, शहर गुरु रामदास दा। ते तुसी सारे शहर च घूम फिलो, खिमा करने इस तरीके दे अंकार बनाए गए ने जिहदे नाल गुरु रामदास जी नूं भुल जाण, ए लोकी भुल जाण। अपनों से बैर रखना तूनों बुतों से सीखा, अद हो गई इन्ना मुतसबपना, इन्नी तंग दिली जो मैं इस शहर घूम फिर के देखदा। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने, तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, वाइस का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फसाने। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने अपनी जान दे देते तिलक ते जनेऊ दी खातर, ते तिलक तारी जनेऊ तारी कदी जो है सरेआम नहीं कहिंदा कि मेरा जनेऊ बचे है, गुरु तेग बहादुर साहब जी दी मेहर दा सदका, बख्शिश दा सदका कोई कहिंदा? वैरी हो गए। शीशगंज में एक दफा आग भी लाई गई सी। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने, तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, वाइस का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फसाने। 35 साल पहले इकबाल ने एक गल आखी है, ते 600 साल पहले कबीर कहता है, हमरा झगड़ा रहा न को पंडित मूला छाड़े दो। भाव ए ब्राह्मण जे

अहंकार भव खंडन साव सुख नाव निध देसी हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सारा ही क्या तिसका मोहताजा रहा जिन हर ख्याया सब किछ तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा थानु दिया सुखदाता निखुट ना कभी जाए आनंद भया सुख सहज समान सतगुर मेल मिलाई मानु नाम जाप नाम आराध आन दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी जिनका कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी

मंगना ही जीवन का लक्ष्य है और कुछ नहीं। भिक्षु, जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, साधन है भिक्षा मंगना। भिक्षा मंगना ही लक्ष्य है, भिक्षा मंगण ली जिंदगी है। भिखारी मंगते गदागर इन्हें भी श्रेणी ने, फिर लुटेरा तबका, चोर तबका, डकैत तबका है ही नहीं। वही तबके वो तो है ही नहीं वहां तबका। लोड़ा की पूर्ति ये तीन ढंग नाल होंगी है, तीन ढंग नाल। गुरु नानक ने सानू किरती बनाया, किरत कर उदम करें दिया जीव तो। फिर ऐसा भी कहते ने, मंगण गया सो मर रहा, मंगण मोल ना जाए, मांगत मान ना पाया, ना मन भिखारी ना बन, भिक्षु ना बन। इस तरह की उम्मत नू मैं नहीं जन्म देना। किरत कर, मेहनत कर, दिमागी मेहनत कर, शरीरक मेहनत कर, कुछ भी कर। हैरानगी दी गल, सारी जिंदगी गुरु नानक ने भरमण दे च लंघाई, उपदेश ते संदेश दे च लंघाई। बिरध अवस्था दे च आखरी समय करतारपुर दे च हल पे चलांदे ने, बीज पे बीजदे ने, खेती पे करदे ने। जगत दिता, जगत नूं दस दिता, मैं किरत नहीं छोड़ी, मैं कम नहीं छोड़िया, मैं धंधा नहीं छोड़िया, ये तो मैं करने। आखिरी दम तक कबीर कपड़ा बुन दे रहे, बुन दे रहे। जब चेलिया ने ही कह दिता कबीर नो हुण ते छड़ो, थोड़ी प्रसिद्धि बड़ी हो गई है, चारों पासे लोकी थानू भगत भगत करके पूजदे ने, सन्मान देंदे ने, हुण ते छड़ो। कहन लगे नहीं, हुण ते मेरी किरत भी कीर्ति बन गई है। हुण जद मैं खड्डी चलाना ते खड्डी दी धुन पैदा होंदी है मेरे मन दे चों, प्रभु दी धुन पैदा होंदी। हुण ते कपड़े बुनना सेवा बन गया, मनुखता दी सेवा बन गया, हुण क्यों छोड़ा। पहले मैं सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति वास्ते कपड़ा बुनदा सी, हुण ते कपड़ा बुनना सेवा बन गया, हुण क्यों छोड़ा। आखिरी समय तक कपड़ा बुन दे रहे, नामदेव कपड़ियां नूं छिम दे रहे। मैं फिर अर्ज करा, मनुख लोड़ां दा त्यागी नहीं हो सकता, लेकिन मनुख लोड़ां दे च नहीं जीवदा, लोभ दे च जीवदा। लोभ दे च ते लोभ मनुख दे मानसिक सथल नूं इतना गिरा देंदी है, प्रभु नाल जुड़ना, प्रभु चिंतन करना, सत्संग दे च बैठना औखा हो जाएगा, कथा कीर्तन सुननी औखी हो जाएगा। ये लोभ नहीं करन देगा। महाराज कहंदे ने, लोभ ते पागल कुत्ता बना देंदा है मनुख नूं। ज्यों कूकर हर काया लोभ तावे दै दिस जाए, लोभी जंत न जाने पख अवख सब खाए। लोभ ते पागल कुत्ता बना देंदा है मनुख नूं, किसे नूं भी नहीं छड्डेगा। पागल कुत्ता जिन्हें पालिया है उन्हों भी वड्डेगा, उन्हों भी खाएगा। इस वास्ते तमाम संत जना ने, अवतारियां ने लोभ दे त्याग दा के। लोड़ा दी सीमा है, लोभ दी कोई सीमा नहीं। लोड़ दी ते सीमा है। इहदे उत्ते इक मैं उदाहरण देना, उन्हां दे के फिर अकरी अर्थ करिए। जैसे भुख दी ते सीमा है, दो रोटियां मैं नहीं खावांगा तो चार खा लेंगा, चलो चार नहीं ते अठ खा लवांगा। सीमा ते है ना, भुख दी सीमा है, स्वाद दी सीमा नहीं है। हुण बंदा सारा दिन खांदा रहेगा, घंटे घंटे च खांदा रहेगा, और अद्धे घंटे च खांदा रहेगा। स्वाद दी सीमा नहीं है, भुख दी सीमा है। लोड़ां दी सीमा है, लोभ दी सीमा नहीं है। लोड़ां मनुख नूं नहीं गिरांदियां, लोभ गिरा देंदा है।

कर बहु करता ज्यों मृतक ओढ़ाया मानुख बिन बुझे व्यर्थ आया अनुक साज सीधार बहु करता ज्यों मृतक ओढ़ाया रहा ताए ताए कृपण श्रम कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया कारया भरण सवारी सिज्जा कामन थाट बनाया संग ना पायो अपने खरते पेख पेख दुख पाया सारो दिन से मजूरी करता तो मुसला कराया

और भी ऐसा फरमान कर दे नाम बिना जेता व्यवहार गुरु अर्जन देव जी, नाम बिना जेता व्यवहार ज्यों मेरे तक मिथ्या सिंगार, सारा हार श्रृंगार मुरदिया का सिंगार, मुरदे श्रृंगार है। कब्रिस्तान दे शायद इतनिया कबरां ना होवन जिदियां चलदियां फिरदियां कबरां दिखाई दे, कुछ भी नहीं है जीवन दे, कुछ भी नहीं है। जरा फोल के वेख लेना सिवाय मुरदमी तो होर कुछ भी नहीं निकलेगा, सिवारे रोने पिटण तो होर कुछ भी नहीं निकले। खोल के देख लेना, मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, हर मनुख ने पता नहीं कितना रोना छुपाया होया, कितना दुख छुपाया होया, ये हसदे मुस्कुरांदे चेहरे पता नहीं कितना रोना छुपाई बैठे, ये चमकदे ते चुपड़े मथे कितना कलेश छुपाई बैठे ने, ये घरां दी खामोशी पता नहीं कितने भांबणां नूं छुपाई बैठी है। बस ये चलदियां फिरदियां लाशां, ये कबरां, ये शमशान घाट, महाराज इस तरह कहिंदे ने भावें कितना शिंगारिया है, कितना साजो समान है, कितनी धन संपदा है, महाराज कहिंदे ने ध्यान नाल इस नूं विचारना है, मुरदा शिंगारिया है, मुरदा शिंगारिया जिंदा नहीं है। जिंदा ते तां हो सकदा सी सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवे कोई, नहीं जीवदा, बाकियां दे मन ते मरे हुए ने। इस मरे हुए मन नूं इस तरह लेना, क्योंकि तार्किक तर्क कर सकदा है, तन दे तल ते जो मर गया जिंदा नहीं हो सकदा, नहीं हो सकदा। चलो मैं थानू घटना भी सुनावा, सिंगापुर दे घटना घटी। एक चंगे धनाढ़ दा नौजवान लड़का चलाना कर गया सिंह, ये घटना बड़ी मशहूर। इथों ही अमृतसर दे निकटों संत गए हुए सन, अपने आप नू संत कहिंदे सन, लोकी मनदे ने, इस तरह दे संतां नू संत आखिया जांदा है, मनिया जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह दा बाणा ते उतार के उन्होंने बाणा अपना दिता होया, उन्होंने कहा इसनों घर दे च रखो शीशे दे बक्से च, अगले साल मैं आवांगा इसनों जिंदा करांगा। मलेशिया सिंगापुर दे च ए घटना बड़ी मशहूर हुई, जिंदा करांगा। बदकिस्मती समझ लो मैं उन्हां दे नज किधरे उत्थे ही सी, उसे गुरुद्वारे कथा कर रहा सी जिथे वो आए। मैं कह बैठा, मैं कह साल बाद एदियां हड्डियां भी नहीं लगनिया, आखदा पिया संत आखे पिया, तो तनाव खड़ा हो गया, मेरे नाल झगड़ा शुरू हो गया। कहण लगे साल उड़ीके बिना तुसी किस तरह कह सकदे हो, मैं कह मैं कह सकदा रब्बी नहीं है, ईश्वरी नहीं है, मैं प्राण निकल चुके ने, डॉक्टरों ने कह देता है मुर्दा है, नहीं जिंदा होएगा, नहीं होएगा। साल बाद वो कहने जिंदा करांगा, मैं कि साल बाद शायद इसका मांस भी ना लवे, हड्डियां भी ना लवे। ये तनाव काफी वधिया, मैनू बड़ा बुरा वाला आखे, जिन्हों का लड़का गुजरिया सी कहने थानू पता नहीं है संत सराप दे देंगे, तो मैं क्या फिर समझ लेना, मैनू सराप लग जाए तो फिर सच समझ लेना, तो जे ना लगे तो फिर मेरी गल नू सच समझना। उन्होंने शीशे दे बक्से दे जद घर दे च रखण दा यतन किया, तो पुलिस घर पहुंच गई, मुरदा घर दे च नहीं रख सकते, सिंगापुर के कानून के मुताबिक कब्रिस्तान दे दफन करना पे। तो हुण मुसलमानां दा कब्रिस्तान उन्होंने इनकार कर दिता है, सिख ऐसे नहीं दफनाउण देना, ईसाइयां दा कब्रिस्तान उन्होंने भी इनकार कर दिता, इत्थे सिर्फ ईसाई दफन हो सकते हैं,
بودھیاں دے قبرستان دے

अनगिनत। ते संतां ने कहा साल बाद जिंदा करांगे, साल तो पहले पहले संत आप चलाना कर गए। उन्होंने भी शीशे दे बक्से च रख के सवार के रखना पाया, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह की वसीयत की हुई सी। शायद सोचते हो गए दो चार साल बाद मैं जिंदा हो जावगा, बक्से च ही रखना मैनू। पर चूंकि वो बहुतियां अपना चेला बना रहे, चेला बना चुके सन, ते चेले साढ़े धनवान सन, ते धनवान कोई सौ दे च एक अद कोल अकल आउंदी है, बाकी ते अकल नूं ताले ला के ही रख दे। बाकियां दी अकल ते बस धन ही आउंदी और कुछ नहीं, इस तों इलावा उन्हां दी अकल नहीं आउंदी। मायाधारी अत अन्ना बोला, ये ते अंधे आउंदे ने, ना सच वेख सकदे ने ना सच सुन सकदे ने। मैं ये लफ्ज़ भी कहे, मैं कह थानू गुरबाणी की सच्चाई ना सुनाई दे रही है ना दिखाई दे रही है। तो मैं कह गुरबाणी की रोशनी च कहा जा सकता है अंधे। अज इस घटना नू अंदाजन 25-26 साल हो गए ने, शायद इस तों भी ज्यादा।

धन गुरु अमरदास जी महाराज दी परिक्रमा करके और उसे ही परंपरा दे मुताबक अपना मस्तक बिरद बाबा गुरु अमरदास जी महाराज दे कदमां ते रखे, हथ जोड़ के मत्था टेकया, आप तन दे करके धरती विच समा गए, जोत करके गुरु अमरदास जी महाराज दे अंदर विराजमान होए। घन हर बूंद बसोरु मावल कुसम बसंत गलंत नयावे राव सस किरण उदर सागर को गंग तरंगे अंत को पावे रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के कव जन भल उन्हें जोगा।

तेरी उपमा तोहे बन आवे। धन गुरु अमरदास जी महाराज ऐसी ब्रिद मूर्ति हन जिन्हां दे जीवन दी छाप जगत नू ए उपदेश देंदी है कि उम्र दे किसे भी हिस्से विच मनुख नू निराश नहीं होना चाहिदा। चाहे शरीर बुढ़ा भी हो गया, बिरद भी हो गया, पर मनुख दे अंदर अगर उत्साह है, उमंग है, आशा है, तो बहुत वड्डे वड्डे कम उस अवस्था विच भी हो सकदे ने जदकि अक्सर बुढ़े पिछलो की निराशा दे खड़ विच जा गिरदे ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज दा जन्म पिंड बासर के जिला अमृतसर माता लक्ष्मी जी दी कुखों पिता तेजभान दे घर विच होया। आप जी दा जन्म विसाख सुदी 14-1526 विच होया। आप जी दी संतान मोहरी जी, मोहन जी ते दो पुत्रियां दानी जी, भानी जी, ए आप जी दा ग्रस्ती जीवन सी। बच्चियां देच, परिवार देच, घर ग्रस्ती देच आप जीवन इस ढंग दा बरतीत कर रहे सन जैसे के पानी देच रहिंदा होया कमल। लेकिन फिर भी एक धू अंदर बनी रहिंदी सी कि परम आनंद वो जो समाधि है वो नसीब होवे। कहिंदे ने आपने इसी इच्छा नु मुख रख के थां थां ते तीर्थां दा विरटन कीता और अक्सर गाहे बगाहे हरिद्वार भी जांदे सन। एक दिन गंगा दे इशनान करके ठंड दे दिन सन रेत दे बैठे चरणा नु पसार के पैर पसार के एक पांदा जो इल्मे निजूम दे माहिर सी ज्योतिषी सी लंघिया। उदी निगाह पसरे हुए चरणा ते पै गई और उसने मत्था टेकया। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने रोकया, आखिया ब्राह्मण देवता मैं ते खत्री हां, तू ब्राह्मण है, कुल करके जात करके तू उच्चा है, मैनू क्यों मत्था टेके है। तो ब्राह्मण हथ जोड़ के कहन लगा, महाराज थोड़े चरणा दिच पदम है, ये पदम ते किसे ब्रह्म ज्ञानी दे चरणा दिच होंदा है, ये पदम ते किसे पहुंची हुई रूह दे चरणा च होंदा है, थोड़े कदमा दिच पदम। तां गुरु अमरदास जी महाराज बड़ी रूहानी मुस्कुराहट च कहन लगे, ब्राह्मण देवता मैं ते एक यात्री हां,

चार तरह दे पुरुष धार्मिक मंडल दे देखी देने। एक ओ जन्म लेंदा है, अख खोलदा है ते अपने आप नूं ओ परमात्मा दी गोद विच महसूस करदा है। इस तरह दे पुरुष अवतारी पुरुष कहलांदे ने, उच्च कोटी दे पुरुष कहलांदे ने और ए प्रथम श्रेणी दे पुरुष होंदे ने। दूसरे ओ जो चल चल के पहुंचे ने परमात्मा दी गोद तक, साधना कर कर के पहुंचे ने परमात्मा दी गोद तक। ए गल वखरी है, साधना एक दिन दी कीती है, एक महीने दी कीती है, या साधना एक साल दी है, या एक जन्म दी है, या कई जन्मा दी है। ए उन्हां दे चलन दुते सी, पर पहुंचे हो साधना कर करके ही ने। इस श्रेणी दे जिहड़े महापुरुष आंदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने भगत संत। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे गुरबाणी दे नाल नाल भगतां दी बाणी है। भगत बाणी ते गुरबाणी दे कोई अंतर नहीं, अगर अंतर कोई करना भी होवे तां इतना ही है के गुरु ओ है जिसने अख खोली ते परमात्मा दी गोद सी। भगत ओ है जो चल चल के पहुंचे है परमात्मा दी गोद तक, लेकिन दोहां ने गल उस गोद दी कीती है, उस परमात्मा दी कीती है, उस अकाल पुरख दी कीती है। तो कबीर ते खुद अपनी रचना विच कबूल कर देने के पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई। हे अकाल पुरख, पिछले जन्म दे च भी मैं तेरा सेवक से साधना करदा रहा, पर मेरी साधना सफल नहीं हुई क्योंकि मैं तेरी गोद तक नहीं पहुंचया, मैं तेरे दर तक नहीं पहुंच सकया। जीवन दा अंत हो गया रस्ते दे च, और अदकी तू मेर कर बख्शिश कर, मैं तेरी गोद तक पहुंचा, तेरे दर तक पहुंचा, तेरे घर तक पहुंचा। तो दूसरी श्रेणी दे च ए मनुख आउंदे ने परम पुरख जो चल चल के परमात्मा दी गोद तक पहुंचे ने। तीसरे ओ ने जो दो कदम अग्गे चलदे ने एक कदम पिछे भी मुड़दे ने। उन्हां दा चलना बस ऐसा है, अग्गे भी गए पिछे भी चले गए, दान पुन भी कीता पर कुछ बेईमानी भी कर ली, सच भी बोल लिया, झूठ भी बोल लिया, परोपकार भी कर लिया, दुराचार भी कर लिया, अग्गे भी वधे पिछे भी मुड़े। ए तीसरी तरह दे साधक ने और अक्सर रस्ते विच रह जांदे ने ते धार्मिक दुनिया दे ए तीसरी कोटि दे मनुख ने। धार्मिक दुनिया दे चौथी श्रेणी दे ओ मनुख ने जो जीवन भर पुछदे ते रहंदे ने पर मार्ग ते कदी कदम नहीं रखदे, चलदे नहीं। जिन्हां दा जिक्र भाई गुरदास जी इंज करदे ने, पूछत है पथक ते मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। सिर्फ पुछदे ही रहंदे ने और सारी जिंदगी पुछदे ही बतीत कर छड़दे ने, मार्ग ते कदी कदम नहीं रखते, कदी पैर नहीं रखते। ए चौथी श्रेणी दे मनुख ने। पंजवी श्रेणी दा मनुख धार्मिक दुनिया दे च नहीं आउंदा, ओ मनुख है जिहदी जिंदगी दे च धर्म कोई मसला ही नहीं, ओ पुछदा भी नहीं, चलदा ते है ही नहीं, ओ पुछदा भी नहीं, ओदी जिंदगी दे च इसदा कोई सवाल नहीं है, ईश्वर ओदी जिंदगी दी समस्या नहीं है, धर्म उदे जीवन दी कोई लोड़ नहीं। ए बिल्कुल बेहोश सुत्ता होया मनुख है, इत्ते कोई बहुत वड्डी दुख दी चोट इसनू लगे ताई धर्म इदी जिंदगी दा मसला हो सकेगा, ताई ये थोड़ा सुचेत होके इस मार्ग ते चल सकेगा, वरना ए ते इसे तरीके नाल बेहोशी रे जिंदगी बतीत करदा है। और दुख हर हालत विच दुख नहीं, दुख दी चोट इस वास्ते है कि बंदा जागे, दुख दारू सुख रोग भया जां सुख।

साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने कुछ परिस्थितियां नूं मुख रख के ते अपने चोण दे नजरिए नूं मुख रख के गद्दी पोतरे नूं बख्शिश कीती। गुरु हर राय साहब जी महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे पोतरे ने ते सिख जगत विच ए अदुत्ती घटना अगां चल के घटी कि गुरु हर कृष्ण जी महाराज ने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज अपने दादे नूं गद्दी दित्ती। दादे ने पोतरे नूं गद्दी दित्ती है, पोतरे ने दादे नूं गद्दी दित्ती है। गुरु हर राय साहब जी महाराज शांति दी मूर्ति, शांति दे मुजस्मे सन। इतिहास दे च बड़ी सुंदर गाथा है। बगीचे विच आप टहल रहे सन कि आप दा जामा चोला हवा नाल उड़िया ते उस उड़ारी दे नाल एक फुल टुट गया। चोले दे स्पर्श दे नाल एक खिड़िया होया फुल जमीन ते गिरिया। गुरु हर राय साहब दे कदम रुक गए, भावे आप बाल रूप दे सन उत्थे ही खड़े हो गए, सोची पै गए। इतने विच गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज टहलदे होए आए ते पुछन लगे, बेटा किस सोच दे च, किस दलील दे च पए हो? तां गुरु हर राय साहब कहन लगे, गुरदेव पिता, मेरे चोले दे स्पर्श नाल ए फुल टुट गया। हुणे खिड़िया होया सी, डाली नाल लगिया होया सी, झूम रहा सी, डिगया, इहदा झूमना बंद हो गया, मैनू दुख है। इस तों ही पता चलदा है गुरु हर राय साहब जी महाराज दा हिरदा किन्ना कोमल है, कितना अत्यंत कोमल है। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने एकदम फरमान कीता, बेटे जे वड्डा चोला पहनी दे तां उसनों संभाल के रखी दे। इशारा रमज बहुत वड्डी कर गए गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, और इशारियां च कह गए तुसी चोला हुण अगां चल के वड्डा ही धारण करना है, जिम्मेवारी बहुत वड्डी संभालनी है। समा पा के गुरु नानक देव जी महाराज दी गद्दी दे आप वारस बने। 2200 असवार आप अपने नाल रखदे सन, लेकिन जंग आपने किधरे भी नहीं लड़ी। ये सिर्फ आप जी दी सुरक्षा और जगत नूं ए दसना सी कि जिंदगी दे कुछ मसले ऐसे ने जो बैरूनी शक्ति नाल हल हुंदे ने, कुछ मसले ऐसे ने जो अंदरूनी शक्ति नाल हल हुंदे ने। सबर, सिदक, विचार, ज्ञान दी मूर्ति गुरु हर राय साहब जी महाराज दे अगों एक दफा सिखा ने बेनती कीती, पातशाह पाठ करें हम नित गुरवाणी, अर्थ परमारथ किछु न जानी, जो मार्ग गुरु शब्द बताएं सो हम ते नहीं जात कमाए। पातशाह बाणी दा पाठ ते सी दिन रात करदे आं, पर सूझ नहीं, समझ नहीं, अर्थां दा बोध नहीं। ते जे किसे किसे थां अर्थ दा कुछ बोध भी है तां बाणी हिरदे च नहीं वसी, अंदर नहीं टिकी। तो जद हिरदे च बाणी वसी नहीं ते बाणी दी साडे कोल विचार नहीं ते पातशाह इस तरह दे पाठ दा भी कुछ लाभ है? इतिहासकार भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने, सैर करदे होया आप जी दे नाल सिखा ने ए प्रश्न कीता। आप दा पैर एक मिट्टी दी ठीकरी नूं वजिया, ए ठीकरी एक ऐसी डोली घड़ी दी सी जिहदे च घिओ पा के रखिया गया सी काफी चिर तक, काफी समय तक। टुट गई, भज गई, अगले ने सुट दित्ती, लेकिन उस ठीकरी दे चिकनाई सी। महाराज कहन लगे, रही चिकनता ठीकर माही, त्यों बानी रहे मन माही। ए ठीक है कि हुण घिओ नहीं, पर घिओ दी चिकनाई अजे भी उस ठीकरी दे नाल है। ये ठीक है हिरदे च बाणी ते नहीं टिकी, पर बाणी अपनी चिकनाई दे जाएगी। कम से कम जितनी देर तक मनुख पाठ करेगा इतना बहुत ते जरूर

देश जकड़िया गया। साहेब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे, अहिंसा भी सूरबीर नूं ही शोभा देंदी है, कायर नूं नहीं, बुजदिल नूं नहीं। अहिंसा धर्म दा एक निक्का जिहा अंग जरूर है, संपूर्ण धर्म नहीं है, मुकम्मल धर्म नहीं है। इस वास्ते साडे देश दे पुराने योधे अवतारी पुरुष भी शस्त्रधारी सन, जैसे श्री राम धनुषबाण धारण करते ने, श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करते ने, अर्जुन दे हाथ विच धनुषबाण है, परशुराम दे कोल बरछा है, शिवजी दे पास त्रिशूल है और गधा है हनुमान कोल। गरज के इस तरह दे जितने अवतारी पुरुष ने कोई ना कोई शस्त्र अपने कोल रखते ने, और इस गल दा प्रतीक है कि हिफाजत बाहरों भी करनी है, हिफाजत अंदरों भी करनी है। अंदर दे वैरी कोई होर ने, बाहर दे वैरी कोई होर ने, ते संघर्ष दोहां नाल करना पएगा। अपनी आत्मा नूं भी बचाना है, अपने शरीर नूं भी बचाना है, अपने मन नूं भी बचाना है, पर अपनी धन संपदा नूं भी बचाना है, अपने देश नूं भी बचाना है, अपने देश की संस्कृति नूं भी बचाना है। देश प्यार दी लहर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस ढंग नाल भारतवासियां दे अंदर फूकी और आखिया, देश दी आजादी लई और देश दी संस्कृति नूं कायम रखण लई योधे चाहिए ने, महाबली चाहिए ने, जो सिर नूं हथेली ते रखण। हकीकत है, सच्चाई है, आनंदपुर साहिब दे विसाखी वाले दिन आपने सिरां दी मंग कीती। जो सिर भेट करना नहीं जानदा, वो अपने सिर दी हिफाजत भी नहीं कर सकेगा। जो सिर भेट करना जानदे ने, वो संस्कृति दा सिर, देश दा सिर, देश दे धर्म दा सिर उच्चा रखदे ने। पर जो सिर निछावर करना नहीं जानदे, वो देश दा सिर नीवा करा छड्डदे ने। देश दी संस्कृति नूं मलिया मेट करन विच ही अगाह हुंदे ने। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज महाबली इस तरह दे सूरमे सन। अज तक दुनिया भर दे आलम कहंदे आए ने कि लड़ाई दा कारण जर जमीन ते जोर है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जीवनी दा वरका पड़ी है ता आप दियां जंगां दा कारण ना जर है, ना जमीन है, ना जोरू है, और दुनिया दा वाहिद ए पहला महापुरुष है जिसने दुनिया दे आलमां दी इस गल नूं झटला के रख दिता है कि सिर्फ जर दी खातर ही जंग नहीं आउंदे, सिर्फ जोरी दी खातर ही जंग नहीं आउंदे, और सिर्फ जमीन दी खातर ही लड़ाई नहीं आउंदी, बल्कि मजलूमां दी रखिया रही, दीना दी रखिया रही, देश दी रखिया रही, संस्कृति दी रखिया रही भी तलवार चुकनी पैंदी है। वैर विरोधी हिरदे नाल लड़ना होर गल है, निर्वैर जज्बे नाल लड़ना होर गल है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भावे हाथ दे तलवार चुक ली है, पर अंदर हिरदा निर्वैर है, और निर्वैर होने का एक बहुत वड्डा सबूत मैदान जंग सिंह सूरमे जिन्हां नूं मार मार के गिरा देंदे ने, भाई कन्हैया उन्हां नूं ही जल पिला के खड़ा करता है, पकड़ के मुश्कां बन के भाई कन्हैये दियां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे हजूर पेश कीते गए। आखिया गया, महाराज इह साडे विच गद्दार है, असीं जिन्हां वैरियां नूं मार के गिरांदे हां इह उन्हां नूं ही पाणी पिला के फिर सुरजीत कर देंदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भाई कन्हैये तो पुछया, क्यों भाई कन्हैया, ये तेरे ते की इल्जाम लांदे ने, तू वैरियां नूं पाणी पिलांदा है। महाराज, मैं ते किसे वैरी नूं पाणी नहीं पिलाया, मैं ते आप नूं जल छकांदा, मैं ते जिस मूंह नूं देखदा आप दा ही मुखड़ा प्रतीत हुंदा है। गलवकड़ी च लै लिया, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने कोलों मरम डब्बी भी दित्ती, आखिया लै जख्मां ते मरम पट्टी भी कर लिया कर। इस तरह दा कोई निर्वैर मनुख ही जगत दे इस तरह दे वैरियां नाल पेश आ सकदा है।

किञ्चित् साधसङ्गम् ऊट नानक नारायण। धार्मिक दुनिया विच काम एक ऐसा विषय है, एक ऐसा प्रकरण है, एक ऐसा मजमून है जो अछूता है, जिसते बहुपक्षी विचार नहीं हुई, जे किधरे हुई है इशारतन खुल के नहीं हुई, जे किधरे हुई भी है दबे हुए अल्फाजां च खुले शब्दां विच नहीं, उसका एक कारण भी दिखाई देता है। मनुख दा लोभ बार प्रगट होता है और बार भी वो कृत है, धन की पकड़, पदार्थां की पकड़ और उस लई भज दौड़ दिखाई दे जाती है। क्रोधातुर मनुख दा क्रोध भी एक ऐसी कृत है जो बार किसी ते प्रगट होता है, दिखाई दे जाता है। ये तो इस वक्त क्रोध दे जी रहे। अहंकार बोलों के राही तरह तरह की कृत दे राही प्रगट हो जाता है, दृश्यमान है। काम एक अंदरूनी वेग है, एक अंदरूनी बिरती है, एक अंदर का उछाल है। शायद एक कृत भी अंदरूनी बन गई, पर्दे विच बन गई। क्रोध कृत प्रगट है,

देव जी महाराज काम दे त्याग दा उपदेश नहीं दे रहे। इस उपदेश दे च है काम दे प्रति संयम। जैसे बकायदा आयुर्वेद ग्रंथ कहंदे ने भूख लगे खादा होया भोजन दारू है, औषधि है, अमृत है, पर भूख नहीं एक एक बुरकी पाई हुई ए रोग पैदा करेगी। शरीर की लोड़ नहीं तू दे रहे हैं। काम दा वेग शरीर की अधिक शक्ति है जो शरीर दे च नहीं समा सकती। वो अधिक वेग परबलवासना बनता है, काम बनता है। इसका निकास सही ढंग नाल हो सके, संयम नहीं हो सके, बकायदा शिक्षा है, दीक्षा है, मर्यादा बनाई गई है। लेकिन काम शरीर का हिस्सा है, सोचनी का नहीं। आज दे समय दे काम चिंतन का हिस्सा बन गया है, काम सोचनी का हिस्सा बन गया है। शरीर देश ते है ये मन देश भी हो गया, चिंतन देश आ गया, सोचनी देश आ गया, विचारां देश आ गया। ताही ते आज जितना साहित बाजार देश बिक रहा है, लोकी खरीद के पढ़ रहे हैं, उस साहित्य काम ही काम है। साहित्यकारां दी कलम काम दे संबंध च लिख रही है। लासमी साहित्यकार काम बारे सोच रहे ने, काम दा चिंतन कर रहे ने, काम दे विचार उन्हां दे अंदर चल रहे ने, काम सोचनी बन गई है। किसे वक्त शायरे मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने आख्या सी, हिंद के शायर व सूरतगर अफसाना नवीस है बिचारे के आजा पर औरत सवार। भावें उन्हें अपने देश की गल की थी, हिंद के शायर व सूरतगर अफसाना नवीस है बिचारे के आजा पर औरत सवार। ये जो नावलिस्ट ने, कहानीकार ने, ये जो संत राश ने, ये जो शायर ने, दार्शनिक ने, विचारक ने, इन्हां दे विचारां देच, इन्हां दी लेखनी देच, इन्हां दी चित्रकारी देच, इन्हां दी संगत राशी देच, काम ही काम छाया है। मानो काम तो बिना और कुछ है ही नहीं। सारा साहित्य काम आश्रित हो गया है और इसे ही कहानियां शायरी दे आधार पे बनन वाली फिल्मां काम दी प्रदर्शित तस्वीर बन गई। चारों पासे मानो काम ही काम छाया हुआ है। पोस्टर्स, इश्तेहार, फिल्मां, मैगजीन, शायरी, संतराशी, तस्वीर, सब काम की नुमाइश बन के रह गए। काम चिंतन बन गया, काम विचार बन गया, काम सोचनी बन गया, काम याद बन गया, काम राम बन गया, काम परमात्मा बन गया। जबकि चाहिदा तो ऐसा सी काम नू राम बना दे, लेकिन काम ही राम हो गया और चारों पासे काम ही मनुख दे दिल दिमाग ते छा के रह गया। काम एक ऐसा जज्बा अगर विचारां च आ जाए, सोचनी च आ जाए, चिंतन दे च आ जाए, त
तो काम

हे जगत गुरु, हे जगत दे मालिक परमात्मा, असी ते इस दौर दे इस कल युग दे कामी जीव हां, काम नाल भरे होया। प्रथम इस काम नूं अर्थां दे रूप दे समझना है। काम दे अखरी अर्थ ते ने कामना, पर कामनावां विच बहुत वासना है। इस वास्ते प्रियवाची शब्द बन गया काम वासना। कामना विच पदार्थ होवन तो काम लोभ, कामना सता दी होवे तो काम अहंकार। पर चूंकि कामना बहु वासना दी है, इस वास्ते काम वासना ते शब्द पर चलत हो गया काम लोभ, काम अहंकार। ये कथनी विच ना आ सके, ये लेखनी विच भी ना आ सकया। काम दे अर्थ ने कामना, पर चूंकि कामना दी ज्यादा वासना है, रूप है, यही कारण है कि काम दे अर्थ ही बन गए वासना, काम दे अर्थ ही बन गए रूप। रूपे कामे दोस्ती, रूपे कामे दोस्ती, भुखे सादे गंड। जैसे स्वाद सारा भुख दे च है, इतना भोजन दे च नहीं, तो वासना रूप दे ही आकर्षित होंदी है, रूप दी तरफ खिंच दिए। तो काम ते रूप दी दोस्ती बन गई। एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखे है, वो कहिंदा है जब हुसन नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गिले दीवार पर शैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पर शैदा नहीं होता। दीवार देते जो फुल बने होया है, कोई बुलबुल उसते नगमे नहीं अलापती, नहीं चहचहांदी, नहीं गीत गांदी, क्योंकि तस्वीर है, हुसन दी तस्वीर है, हुसन नहीं, रूप दी छाया है, रूप नहीं। तो पंछी सियाणे ने छाया ते आशिक नहीं आंदे, छाया ते फिरा नहीं आंदे, रूप ते स्वप्न ते। मनुख ते किसे किसे थां पंछियां तो भी गया गुजरिया है, इते तस्वीरां ते भी मोहित है, चाहे चलदी फिरदी तस्वीर है जैसे कि फिल्मां, चाहे पत्थर दे उते उकरियां या तस्वीरां ने, चाहे तरह तरह दी इल्मे मसूरी है, चित्रकारी है, मनुख ते उसते भी फिदा होया पे। यही कारण है कि फैश तस्वीरां वालियां मैगजीन्स बहुत बिक रहे ने, बहुत पढ़े जा रहे ने, और उन्हां तस्वीरां नूं मनुख देखदा है, खूब देखदा है। दूर क्यों जाओ, मनुख दा ए वेग किसे समय इतनी शिखरता ते पहुंचया सी कि जमीन दे मंदिर भी काम दे बने, राम दे नहीं, जैसे के खजुराहे दे मंदिर, कोणार्क दे मंदिर, जगन्नाथ पुरी दियां पत्थर ते उकरियां तस्वीरां मूर्तियां। हैरानगी है, खजुराहे नूं देखण लई देश विदेश तो भीड़ पहुंचती है, और छोटा जिहा कस्बा, लेकिन चारों पासे फाइव स्टार होटल भी ने, एयरपोर्ट भी है, खूब जांदे ने सैलानी,
और सैकड़े एकड़ विच फैले हुए इना मंदरां नू देखण लई। की है इना मंदरां विच? कोई कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, किसे संत दी मूर्ति दे दर्शन करन जा रहे ने, किसे अवतार दे चित्र दे दर्शन करन जा रहे ने, कता ही नहीं। उत्थे जो मूर्तियां ने वो काम दिया मूर्तियां ने, वासना दिया मूर्तियां ने, मनुख वेखन जा रहे है, मनुख दे अंदर दी वासना इसनु मजबूर कर रही है। एक कोणार्क जांदा है, जगन्नाथ पुरी दियां बार दियां तस्वीरां देखदा है और खजुराहे दे मंदर देखदा है। इस तो स्पष्ट होंदा है कि मनुख दे वासना दे वेग ने मंदिर भी बनाए ते वासना दे बनाए, प्रार्थना दे नहीं। मंदिर भी बनाए ते काम दे बनाए, राम दे नहीं। हुन इस सदी विच इस युग विच ते दिल दिमाग दते एक काम ही छा गया। हर पासे इस दी विचार, इस दी प्रदर्शनी अखबारां विच, शायरी विच, फिल्मां विच, साहित्य विच, तरह तरह दियां तस्वीरां विच, और चारों पासे इतना काम दा प्रगटावा होवे, प्रचार होवे, तो कोई ध्यानी कोई साधक राम दा चिंतन करे इस युग विच कठिनाई है, अगर वो कर सके तो महान है। भगत रविदास जी महाराज नू इत्थे ही दुख तो के कहना पिया, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। इसी काम दे हड़ देच बह गया समुच्चा मगरिब, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, और बदकिस्मती है ये भारत जो सदियों तक धार्मिक देश रहा है और धर्म दी महिमा इत्थे बड़ी प्रगाढ़ रही है। अफसोस ए भी अज यूरोप दी नकल कर, मगरब दी नकल कर, पच्छम दी नकल कर, काम दे वेग दिच बह गया, काम दे दलदल दिच फस गया। और यही कारण है कि राम दा चिंतन घटदा गया, घटदा गया। हुन मोची ते कदम कदम ते बैठे मिलदे ने जुतियां गंढण वाले, किसे रविदास दे दर्शन नहीं आंदे। कपड़े बुनण वाले ते बहुत मिलदे ने, कबीर दे दर्शन नहीं आंदे। नाई ते बहुते ने, सैण किथे। कपड़ियां नू रंगण वाले ते बहुते ने, पर नामदेव किथे। चेतने महाप्रभु ए किथे। हुन कोई मीरा एक तारा लेके भजन दिश डुबी होई नहीं दिखाई देंदी। हुन कोई माता भाग कौर सुरवीरता दी मूर्ति नहीं दिखाई देंदी। समो जगत इसे ही वैण देच वह तो रहा है, इसे ही हड़ देच वह तो रहा है। और धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक देच इसी वेग दा जिक्र कर रहे ने। हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनी भरमावणे चित हरणं त्रैलोक गमं जप तप सील बिदारणे। हे काम तू कीते हुए जप नू, कीते हुए तप नू, शील नू भंग करन वाला है। ना तू संजम रहन देना है, ना तू शर्म रहन देना है, ना तू जप रहन देना है, ना तू तप रहन देना है। इतना चंचल कर देना है कि मनुख लई राम दा चिंतन
ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਲ ਚਲ ਚਲ, ਇਤਨਾ ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੋ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਟਿਕਣਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਅਗੰਮੀ ਮਹਾਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਕਾਮ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮ ਦੀ ਭੇਟ। ਅਗਰ ਕਾਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕਾਮਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜਾਨੀ ਭਰਮਾਉਣੇ ਚਿਤ ਹਰਣੰ ਤ੍ਰੈਲੋਕ ਗਮੰ ਜਪ ਤਪ ਸੀਲ ਬਿਦਾਰਣੇ ਅਲਪ ਸੁਖ ਅਵਿਤ ਚੰਚਲ

और इस दौर देच, इस कामे युग देच हम कहियत कलयुग के कामे जो संतान पैदा हो रही है, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार जिन भूत पैदा हो रहे हैं। पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदा, पुत ते जिन भूत है ती भी जिन भूत है, कोई मीरा नहीं पैदा हो रही, माता भाग कौर नहीं लैला पैदा हो रही है, कोई कबीर कोई रविदास कोई भाई मनी सिंह कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे, मजनू पैदा हो रहे। क्यों? मां बाप शरीरक तल तो उच्चे ही नहीं उठ सके, दोहां दा मिलन पहले शरीरक होवे, सहजे सहजे ए जद शरीरक तल तो उच्चे उठन उस समय इन्हां दे घर औलाद आवे, भगत आणगे दार्शनिक आणगे विज्ञानक आणगे संत आणगे। पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके, वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके और इसे दल दल दे फसे रहे, तो औलाद आएगी जिन ते भूत, जिन्ना ते भूतां नाल ए युग ए संसार भर गया। जिन भूत जो अदृश्य रूप दे पहले कर्म करते सन, दृश्यमान रूप दे ए मनुख आज कर रहे हैं। जिन भूतां नू काबू करना औखा सी, अजोकी औलाद नू काबू करना औखा है, बहुत औखा है, कठिन है। ए कॉलेज स्कूलां दियां कुर्सियां तोड़ रहे ने, उस्तादां नू मार रहे ने, तरह तरह दे कुकर